अस्सलाम वालेकुम सामरम, सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 जून प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर की 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप नशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा 2.73 AE 4 FS में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिला प्रोग्राम अनातोली के शाहकार आसमानी कहानियां और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल खबरों के खुलासे से इख्तिताम पजीर होगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपत।

पेट्रोल पंप में आग लगा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। दो अफरा जख्मी हुए। हर कीफ इलाके में हमलों ने गोदाम रहायशी इमारतें और गाड़ियां निशाना बनाए, जिसके नतीजे में वजारत के मुताबिक 10 अफरा जख्मी हुए। शहरी जान नुकसान मुतद इलाकों में बढ़ गया है। मरकजी देनेप्रो पेट्रोफिस्क के इलाके में हमलों ने मकान एक डाकखाने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। वजारत ने कहा कि शहर पाउल हराट में 8 साल बच्ची हलाक हुई, एक और शख्स जख्मी हुआ। जनूबी ओडिशा इलाके में रूसी हमलों ने ईंधन के टैंकरों एक गैस टैंकर को आग लगा दी, जिससे एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक बार बार हवाई हथियार की वार्निंग्स ने फायर फाइटिंग के कोशिश में रुकावट डाली। वजार के मुताबिक मशरकी दोनेस्क के शहर क्रामातोर्स्क में 3 अफरा हलाक, कम अज कम 6 जख्मी हुए। वजार ने कहा रूस के रोकने का कोई इरादा नहीं और यूक्रेन की इतिहादियों पर जोर दिया कि वो सख्त पाबंदियां कर दें और हवाई दिफा को मजबूत बनाए। यूक्रेन को फजाई हमलों में अपनी हिफाजत करने की सलाहियत को बढ़ाना जरूरी है। यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को मजबूत करना जिंदगियों को बचाने के लिए फैसला कुन है। यूनिसेफ कजम जंगबंदी एक मोहलक शराब बन गई है। कौमता के बच्चों के फंड यूनिसेफ के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के ऐलान के बाद से गजा में कम से कम 265 फलस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जमान जेम्स एल्डन ने कहा ऐलान करते जंगबंदी के बावजूद 8 माह से ज्यादा अरसे से रोजाना औसतन एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जंगबंदी को जालमाना और जानलेवा करार देते हुए एल्डन ने सवाल किया कि क्या इसे अब भी जंगबंदी कहा जा सकता है जब बच्चे मर रहे हैं। इसके साथ इस नई तुर्किया से खबरें खत्म हुई। तो सामिन तुर्किया की गुलकारा देमे सारोल की आवाज में तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल है खोरकुम यो।

अहदाफ हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला, शहरियों की महरमियत। इस वक्त तकरीबन तमाम तुर्क शहरी गैर मुल्की नेविगेशन एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक गैर मुल्की इदारा हर रोज लाखों शहरियों के मकाम, उनके आने जाने की जगह और वहां गुजारे गए वक्त को हर सेकंड ट्रैक कर सकता है। मजीद ये कि यह लोकेशन डेटा तकरीबन आधे मीटर की बारीकी तक दुरुस्त होता है। मकामी नेविगेशन के जरिए इस मालूमात को गैर मुल्की हाथों में जाने से रोकने का अज़्म है। दूसरा, हंगामी हालात और जंग के मज़ल्लात। यूक्रेन जंग, गजा और ईरान पर होने वाले हमलों ने यह जाहिर कर दिया है कि 21वीं सदी में भी अमन कितना कमजोर है। बुहरान के औकात में कोई गैर मुल्की नेविगेशन सिस्टम लॉजिस्टिक्स, दिफा और हंगामी इमदाद के कामों को रोक सकता है। यहाँ तक के पाबंदियों के नाम पर इन सिस्टम्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। मकामी नेविगेशन इस कमजोरी को खत्म करेगी। तीसरा, शहरियों के डेटा की सिक्योरिटी। बहुत सी नेविगेशन एप्लीकेशंस मुफ्त नजर आती हैं, लेकिन इस मुफ्त सर्विस की एक कीमत है। सार्फिन का डेटा तिजारती कंपनियों को बेचा जाता है। इश्तहारात और रहनुमाई के जरिए असल में सारिफ को खुद एक प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। मकामी नेविगेशन का मकसद तुर्क शहरियों को इस चक्कर से बाहर निकालना है। चौथा, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट। मकामी नेविगेशन की मदद से ये एप्लीकेशंस खासतौर पर पेशावराना और तिजारती इस्तेमाल में बाहर से इंपोर्ट होना बंद हो जाएंगी। हदफ इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना भी है, यानी इस एप्लीकेशन का पूरी दुनिया में इस्तेमाल होना। इस तरह सरमाया बाहर जाने के बजाय बाहर से पैसा मुल्क में आएगा। यह कदम बहरूनी इन्हिसार को भी कम करेगा। साइंस सनत के वजीर कजर ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल टेक्नोलॉजी मूवमेंट का एक हिस्सा करार दिया और कहा कि दिफाई सनत से लेकर मकामी गाड़ी तक आला टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले तुर्की का इस अहम शोबे में पीछे रह जाना नागुजीर है। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई जहानत से लैस होगा और उसे जल्द ही इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा। नेविगेशन सिस्टम्स अब सिर्फ रास्ते की रहनुमाई का जरिया नहीं रहे। सैटेलाइट से लोकेशन का तायुन, मुसलसल अपडेट होने वाले नक्शे, गली गली का मुआयना करने वाली गाड़ियाँ और